0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
3: Hello?
4: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
3: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
4: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
3: क्या अब आप पागल हैं क्या?
4: पागल आप हैं कि पागल आप हैं? पागल आप हैं
3: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
4: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
3: हेलो,
4: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
4: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
11: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
14: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
17: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया। आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: It's 9:30 PM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
9: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Ben ji.
2: हाँ जी
3: ये एक सेकंड ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे चुप।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर, आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी, इसका
2: उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड।
2: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
3: हाँ, सुसु करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan.

0: rooftop, in a car, at a house party, or dancing with the boom at home, Club Mirchi is bringing the weekend to you. DJ Richard, you gotta give him a shout out, DJ Richard Official on socials. Let's go!
1: इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन और अब जब एक औरत से इतना

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: कहाँ पे है यार। हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
3: Hello?
4: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना जल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत कम से कम। बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
3: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ। आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
4: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
3: क्या अब आप पागल
4: है
3: क्या?
4: पागल आप है
3: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
4: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया?
3: हेलो,
4: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
4: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
3: In association with World Vegan Vision.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: जी
3: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी। चुप,
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड
2: देखिए, सुसु करा होगा उसने। देखिए,
3: हाँ, सुसु करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
6: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें। हर दिन 30 मिनट योगा करें।
5: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
7: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
8: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
7: in association with World Vegan Vision.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: 92.7 FM,
13: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
14: Ladies and gentlemen, we are going to...

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
3: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी, जी
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
7: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल है क्या?
3: पागल आप है, पागल आप है
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे हैं, बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट पका। लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
7: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
6: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
8: सेलिब्रेट योगा विथ अस एट 125 राधातन सेंटर, पार्कवे एडिसन, न्यू जर्सी, संडे June 14, 2026, 10 AM। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 732-470-5598
9: ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट
10: इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड वीगन विजन।
9: Radio Mirchi, it's on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
12: on a ride.
13: Club Mirchi.

0: Whether you're on a rooftop, in a car, at a house party, or dancing with a boo at home, Club Mirchi is bringing the weekend to you. DJ Richard, you gotta give him a shout out, DJ Richard Official on socials. Let's go!
1: इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन और

0: Fefemirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: हाँ जी,
3: ये एक सेकंड, ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे, चुप।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर, आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई, हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
3: हाँ, सुसु ही करा है, चुप,
2: उतार दीजिए, एक सेकंड,
3: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो, आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो। हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Radio Mitri, Radio Mitri, it's hot.
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi. Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Cámbala! ¡Murga, murga! ¡La misma la murga! ¡Mirchi, murga!
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा।
1: हाँ,
2: 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: ए पगला,
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप एक मैनेजर हैं और कंपनी का कोई रूल आपको सही नहीं लगता, तो ऐसे वक्त में क्या स्टैंड लेना चाहिए? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में लेट्स से आप एक ऐसे मकाम पर हैं या कुछ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो आपको कहते हैं कि कुछ नए रूल्स आ गए या आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, और वो आपको लगता है कि ज्यादातर जो काम कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। ऐसे केस में जहां आपको पता है आप मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकते, और आपको ये भी पता है कि जिन लोगों के लिए रूल बना है उनके लिए सही नहीं है, इस कश्मकश से कैसे बाहर आएंगे आप?
4: सी, जब भी कोई चैलेंज होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे वो वर्क प्लेस पर है चाहे वो घर पर है, हमें उसके लिए कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। हम कोई पुरुषार्थ तो करेंगे, एफर्ट तो करेंगे
3: जी,
4: पर मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो चीज आपको परेशान नहीं करे
3: जी।
4: इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे,
3: अतः आपको दिमागी तौर पे परेशान नहीं होना चाहिए,
4: क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आप कुछ भी और करेंगे तो।
3: हाँ, कि ये क्या बात हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें।
4: अगर आपको जाकर के मैनेजमेंट से बात भी करनी है ना, उस कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट तभी आएगा जब आप बहुत स्टेबिलिटी से वो करेंगे
3: जी,
4: असर्टिवली करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि बस हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करने से पहले आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना ध्यान रखना।
3: बिल्कुल,
4: आप किस वाइब्रेशन के साथ जा रहे हैं। देखो, आध्यात्मिकता में बहुत सुंदर कहते हैं आप वृत्ति से वृत्ति बदल सकते हैं
3: जी, जी,
4: आप दृष्टि से दृष्टि बदल सकते हैं
3: जी।
4: जो बोल करके नहीं हो रहा वो आप सोच से भी किसी की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं। आप बहुत कुछ साइलेंस में कर सकते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशंस के हिसाब से अपना अप्रोच बदलना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैनेजमेंट ने कोई ऐसे चेंजेस और रूल्स निकाले हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। अब एक हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएं उस चीज को सुनकर, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये नीचे वालों के बारे में हम सोचते हैं, बहुत एजिटेट हो जाते हैं। फिर हम जब बात करने जाते हैं तो हमारा तरीका भी बड़ा अग्रेसिव होता है। जब हम अग्रेसिव होते हैं तो सामने वाला हमारी बात को इतना
4: महत्व नहीं देता
3: ना, क्योंकि आप बात को तो महत्व बाद में देंगे, आपका जो अग्रेशन है वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है।
4: बिल्कुल,
3: आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्टफुली बात करें तो वो सुनेंगे भी। तो पहली चीज है कि हम अपना ध्यान रखें, दूसरी बात है हम जरूर बात करें। बहुत करके हम सारी दुनिया से बात करेंगे, कैफे में, कैंटीन में बात करेंगे, जूनियर से बात करेंगे, लेकिन राइट व्यक्ति से जाकर के बात नहीं करेंगे। मन में कहेंगे वो समझेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आई हैव सीन की जो अथॉरिटी पर होते हैं, दे आर समटाइम्स सीइंग थिंग्स ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। किसी ने वो दूसरा पर्सपेक्टिव उनको दिया ही नहीं होता। और उनको भी वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्लिक नहीं हुआ होता, वो हमेशा इतने क्लोज्ड नहीं होते हैं। कभी कभी वो इमीडिएटली भी अगर उस चीज को अग्री नहीं करेंगे
4: तो बाद में शायद थोड़े दिनों बाद सोच समझ के वो शायद कर ले।
3: हो सकता है जिस समय आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपसे आर्ग्यू भी करें, और अपने पहले पर्सपेक्टिव जिससे वो अटैच्ड है आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही है ना बहुत ही स्टेबिलिटी और असर्टिवनेस के साथ, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: काम रहकर अपने वर्क स्पेस को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: उसके बाद भी अगर वो चीज आपके अनुसार नहीं होती है, देन ऑल्सो यू हैव चॉइस। वन इज जो आपने कहा कि नौकरी छोड़ दें, कई लोग छोड़ देते हैं, उनको नहीं कंफर्टेबल होता, वो सफोकेट हो जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैंने अपना पूरा ट्राई किया, अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी इस समय पर इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मुझे मेरा रोल प्ले करना है। उनको भी पता है ये चीज सिस्टम से आ रही है,
4: सही बात।
3: उनको भी ये चीज पता है ना कि ये नियम मैंने तो नहीं बनाया, ये पॉलिसी मैंने तो नहीं बनाई, मैं भी तो इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। आ तो ये टॉप लेवल से रही है एंड आई एम ओनली इम्प्लीमेंटिंग इट, तो वो सामने वाला भी समझता है कि इनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, पर इनकी भी लिमिटेड पावर है। सो देर आर वेज टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी काम मैनर, पर ज्यादातर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत भी आप चेंज लेकर आ सकते थे ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा चेंज इतना तो हो सकता है कि आपने ट्राई किया, वो नहीं माने, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, पर आपकी शुभ भावना भी सामने वाले को एम्पावर करती है। आपकी प्योर जो भावना है ना, वो भी कहती है अच्छा ठीक है आपने तो ट्राई किया ना, अभी क्या कर सकते हैं, अब जो होगा अच्छा ही होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब वर्क प्लेस पर आपके प्रिंसिपल्स और सिचुएशंस क्लैश करें तो मेंटल पीस को कैसे चूज करें, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कुछ आपको ऐसी चीजें करने को कहा जाता है जिससे आप अग्री नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन ना केवल आप अग्री नहीं करते, कभी कभी वो आपके प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ होता है। तो उस समय क्या करें, जब आप बोलते हैं भैया मैं अग्री नहीं करता, ये जनरल गुड के लिए भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी छोड़ना इतना आसान डिसीजन नहीं होता बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है, तो कौन सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करूं और कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ये कैसे तय करें?
5: वो आपकी चॉइस होगी।
4: अच्छा,
5: वो कोई भी नहीं बता सकता। सी फॉर सम पीपल लाइक आई सेड, वो अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा सफोकेट कर देता है।
4: बिल्कुल करता है
5: वो, उनको उनकी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, रिलेशनशिप पे टोल लेता है। वो कहते हैं मैं बिना नौकरी के चला सकता हूँ,
4: लेकिन ये
5: मैं कम पे वाली नौकरी पे चला सकता हूँ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
4: वो नहीं,
5: या मेरे पास कुछ महीने नहीं होगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे फिर से अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, मुझे फिर से अपने को प्रूव करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता। और कई कहते हैं भाई आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट, मैंने यहाँ ट्राई कर लिया जितना मैं कर सकता था, मैंने सिस्टम से बात भी करी, उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करी, पर अभी वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं होता तो नहीं करता, लेकिन अभी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो फिर बहुत शुभ भावना से अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज, तो फिर हम वो चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि जब ले ऑफ करना होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, अपनी टीम के किसी मेंबर को कहना उनको बहुत मुश्किल होता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, नोटिस पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन अब ये तो हर ही कंपनी में हो रहा है। आप उस समय कहें कि ये बिल्कुल ही मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो भी तो अपनी रीति से गलत नहीं है, वो कहेंगे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम लॉसेस में जा रहे हैं, हमें ये करना पड़ेगा। आप कुछ बेटर तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ करना है तो आप सोचें आप कितना उसको और अच्छे से कर सकते हैं, कंपैशनेटली कर सकते हैं, कि सामने वाले को उस चीज़ का एक धक्का भी नहीं लगे और उनको सपोर्ट भी मिले कि वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बट इट इज़ गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल्स चॉइस, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लेऑफ जैसे मुश्किल वक्त में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को इमोशनली स्टेबल कैसे रहना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इससे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक ऐसे मैनेजर हैं जिनको किसी को ले ऑफ करना है, और सबसे पहले आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, लेट्स से नोटिस पीरियड के बारे में। मैनेजमेंट ने कहा भाई एक महीना है, आप कहते हैं फेयर नहीं है, 6 महीने तो मिनिमम होना चाहिए, और किसी तरह आपने मैनेजमेंट को कन्विंस भी कर लिया, ना 1 महीने हुआ ना 6 महीने हुआ, आपने 3 महीना फिगर आउट कर लिया, तो आपको लगता है चलो हम जीत गए। अब आप जाके एम्प्लॉय के पास जाते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, और फिर एम्प्लॉय कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमको लगता है 3 महीने में नौकरी मिल जाएगी, और आप धक्के में रहते हैं कि एक तरफ कंपनी 1 महीना बोल रही थी जो इसको पता नहीं है, और मैंने उसको खींच तान के 3 महीने कराया, मुझे बहुत जद्दोजहद लगी करने में, और सामने से मुझे उल्टा, मतलब मैं कंपनी की भी थप्पड़ खा रहा हूँ, एम्प्लॉय भी थप्पड़ खा रहा हूँ, तो मैनेजर को कभी कभी लगता है ये चल क्या रहा है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए।
4: सी, आपने जितनी प्रेपरेशन करी ना उसमें ये प्रेपरेशन छोड़ दी थी।
3: कौन सी वाली?
4: उसका रिएक्शन क्या होगा।
3: हाँ,
4: आपने जो किया वो जरूरी था और बहुत अच्छा था। आपने थप्पड़ नहीं खाया, आप अपने प्रिंसिपल्स पर रह करके, अगर हम इससे बाहर चले जाए ना कि हम कुछ करें और उसके बाद सामने वाले को उस चीज के लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए या कुछ वैलिडेशन देना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर हम कुछ करते हैं और फिर हमें लगता है कि सामने वाला उस चीज को अक्नॉलेज करेगा। पर आप एक बार ही सोच करके देखें, ये प्रेपरेशन भी अगर आप कर लेते कि जिसको आप ले ऑफ करने जा रहे हैं
3: जी,
4: उसके लिए 3 महीने के, आप 3 साल भी कहते तो भी उसको एक बार तो धक्का लगना ही था।
3: बिल्कुल,
4: आपके साथ तो आप अपने पर रख करके देख लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी रोजी रोटी उस पर चल रही है। तो वो व्यक्ति जो एक बार ही रिएक्ट करता है वो डर से करता है, वो इनसिक्योरिटी से करता है। लेकिन अगर हमने ये प्रेपरेशन कर ली होती कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैंने भले अपनी रीति से हर प्रकार की कोशिश कर ली, तो भी एक बारी तो वो इमोशनली रिएक्ट करेगा ही, एंड आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी काम एट दैट टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वो बात स्वीकार हो जाएंगे।
3: उसका गिल्ट लेके ना चलें कि उसने, सामने वाले ने क्या कह दिया मुझे।
4: पहले तो गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। आपने मिस्टेक भी करी ना तो भी 1 सेकंड का गिल्ट, फिर रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसे हम गिल्ट करते रहे तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक डॉक्टर है, वो अपनी सारी जान लगा देता है किसी पेशेंट को बचाने में, उसके बाद भी अगर वो न बचा पाए और वो गिल्ट में चला जाए तो वो कोई उसकी मिस्टेक तो नहीं है ना,
3: तो वो अगला सर्जरी नहीं कर पाएगा,
4: बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट फिर दूसरे को समझाना पड़ता है कि आप भगवान तो नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहे वो हम पेशेंट की बात करें या आपके सामने एक एम्प्लॉय बैठा है, आप ये नहीं भूले कि हर एक अपना कर्मा भी लेकर के आता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ के बुरे वक्त में खुद को टूटने से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: समझो उनके लिए कहने में आएगा कि बुरा वक्त है, वो भी हर एक का अपना अपना उतार चढ़ाव है। आप हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकते। अगर उसको इससे अच्छा कुछ मिलना है या उसको कोई तकलीफ सहन करनी है, जिससे वो, कितने लोग इमोशनली ग्रो करते हैं जब उनके सामने कोई ना कोई चैलेंज आता है, वो भी उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है। उनकी लाइफ में उनको किस चीज की जरूरत है वो आपको नहीं पता है।
4: बिल्कुल सही।
3: उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने हैं और उससे उन्होंने कौन से लेसन्स लर्न करने हैं और कौन सा फेथ डेवलप करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना पार्ट अच्छे से बजाते हैं एंड देन वी डोंट गो इन गिल्ट एंड वी टेल आवरसेल्व्स हमने अपना बेस्ट किया, बाकी जो उसके भाग्य का है, जो उसके नसीब का है, वो उसको मिलना ही है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से मिलेगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: नो।
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यूर इन गुड हैंड्स।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णव केटरर्स, द फाइनेस्ट इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस इन USA। लाइव कुकिंग ऑन प्रेमिसेस फॉर एंगेजमेंट्स, मैरिज, बेबी शावर, बर्थडे पार्टीज एंड अडल्ट डे केयर। We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241. Or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, मोहम्मद मैंगलोर से लिखते हैं कि ईगो और जलन से कैसे बचें और दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसे कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे महसूस करें कि हम भी उसकी सक्सेस में इंक्लूडेड हैं। बहुत अच्छा सवाल है।
3: जलन कब होती है? जब हम कंपेयर करते हैं।
2: जी,
3: कंपैरिजन, अगर हमें ये समझ जाए कि दो सोल्स एक डिफरेंट जर्नी पर है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य, तो हमें किसी की भी सफलता को देख करके जेलसी नहीं होगी। वेयर ऑन अ डिफरेंट आर ओन इंडिविजुअल जर्नी।
2: जी,
3: जलन कब होती है? जब मुझे लगता है शायद उसने मेरा क्रेडिट ले लिया।
2: हाँ।
3: शायद ये मुझे मिलना था तो उसको मिल गया।
2: जी,
3: समवेयर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी सेट इन होने लग जाती है। जेलसी का रूट कॉज कंपैरिजन है। और कंपैरिजन में आप क्या करते हैं कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपको वो मिलेगा जो आपके कर्म है, उनको वो मिलेगा जो उनके कर्म है, तो आप मन किसी की सफलता को देखकर जेलस होते ही नहीं हो। आपको पता है कि उनके कर्म का भाग्य उनके सामने लौट कर आया है। जो हम कई बार कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। सो कंपैरिजन इज दैट ओल्ड एज डीमन दैट रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस।
2: क्या बात है,
3: आपकी खुशी को वो खत्म कर देता है।
2: तो कंपैरिजन मत करो मोहम्मद, और खुश रहो, और अपने दोस्तों की सक्सेस में आप इंक्लूडेड भी फील करेंगे और सेलिब्रेट करने का मन भी करेंगे।
3: देखिए, एक चीज ये भी समझना है कि अगर हम किसी की सफलता से जलते हैं तो हम सफलता से जल रहे हैं।
2: हाँ,
3: वो हमारे पास कभी नहीं आएगी।
2: सही बात है।
3: अगर आप औरों की सफलता में खुश होते हैं,
2: क्या बात है,
3: तो वो सफलता आपके घर में भी दस्तक देगी।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
3: एंड जेन्युइनली फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी सफलता में, उसके आगे बढ़ने में खुश होंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वही एनर्जी आप तक लौट करके आए।
2: तो सफलता की जो फसल है, सफल की जो फसल है वो तुम आज बो, अगर आप सफलता से ही ईर्ष्या करने लगोगे तो सफलता आपके घर पे कभी दस्तक नहीं देगी।
3: सफलता का मतलब भी क्या है, हिंदी में बहुत सुंदर है। इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस, हिंदी में हम कहते हैं सफलता। सफलता का मतलब है सफल करना। तो सफल किसको कहते हैं? एक्चुअली हमारे हिंदी में बहुत सुंदर वर्ड है। आप उस व्यक्ति को सफल कहते हो जिसको जो कुछ मिला है वो उसको सफल करता है, चाहे वो उसका समय है, टैलेंट है, स्किल है, धन है। जब आप उसको दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाते हो, उससे किसी का कल्याण होता है, जिसको हम कहेंगे दानी है, महादानी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सच्चे अर्थों में वो सफल है। किसी के पास बहुत है लेकिन मना वो सफल, उसको सफल करना नहीं आता, उसको लगाना ही नहीं आता। क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो वो हमारा भी बढ़ता है। आप कभी भी नोट करना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज भी अच्छे से बनानी आती है, सफल करने का मतलब है आप किसी और को सिखाते हो।
2: सही बात है।
3: तो वो स्किल आपकी भी बढ़ेगी। और उनको आपने सिखाया तो उनसे दुआएं मिलेंगी। तो उनकी दुआएं और आपकी जो स्किल बढ़ रही है वो आपको और सफल करती जाएंगी।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पैसा, नौकरी और दुनियावी चीजों में इतने उलझ गए हैं कि असली जीवन जो शांति, करुणा, सही कर्म और परमात्मा से जुड़ने के लिए हैं, उससे दूर हो गए हैं। हम समझते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन व्यस्त जीवन शैली में ये संभव नहीं हो पाता। कृपया बताएं कि इसका समाधान क्या है।
2: हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया है।
1: जी,
2: वो अलग नहीं है। इसीलिए जो शब्द अभी यूज होता है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी।
1: जी,
2: क्योंकि वो चीज अलग है ही नहीं ना। हमें लगता है धर्म, हमने आधा घंटा पूजा पाठ करी, कोई सत्संग किया, वो धर्म है। फिर दिन भर में हम बहुत व्यस्त हैं, हमें कर्म करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। पर वो कर्म हम कई बार गलत तरीकों से भी कर रहे होते हैं।
1: अच्छा,
2: किसी का नुकसान भी कर दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी के प्रति क्रिटिकल भी हो गए, निंदा भी करी, नीचे गिराया, बहुत कुछ हमने किया। तो वो हमारा जो कौन से खाते में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से
1: लॉस में जाएगा।
2: तो वो धर्म को कर्म में लेकर ही तो आना था। आज वो कर्म क्या है, इसलिए कर्म नहीं कहना चाहिए, कर्म योग कहना चाहिए। सो एनीथिंग व्हिच इज डन राइट, वो पुण्य के खाते में जाएगा। तो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आप दिन भर कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जो सबका भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और आप धन के साथ साथ दुआएं भी कमाएं। देखिए, धन बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए, वस्तुओं के लिए। अब बिना धन के लिए तो आप कोई चीजें तो नहीं आ सकते, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब नोट बंदी हुई तो जो नोट बंद हो गए, अभी उसका आपको ट्रक भर के भी दे दे,
1: ये लीजिए,
2: क्या फायदा। 1,000 का नोट है, आप उसको ट्रक भर के भी दे दे, क्या फायदा है? क्योंकि उस मनी की जो वैल्यू है, इफ इट कैन हेल्प यू बाय अ कमोडिटी,

0: वस्तु के लिए है, पर उसको वस्तु तक रखे ना,
1: सही बात,
0: उसको वस्तु तक रखे, आप सोचे कि फिर वो धन आपको खुशी भी दे देगा, रिश्ते भी दे देगा और हेल्थ भी दे देगा, वो नहीं हो सकता,
1: नहीं हो सकता,
0: वो आपको मटेरियल बेनिफिट दे सकता है, मटेरियल कंफर्ट दे सकता है। तो दोनों को साथ चलाएं, धर्म को कर्म में लेकर आएं, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी।
1: क्या बात है, मुझे तो कंटेंटमेंट, जब मैं इनका सवाल पढ़ ही रहा था आपके लिए, तो मेरी शायद फेवरेट कविता है एक तरह से, हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है, कई बार कोट करता हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कर भी ये सोच सकूं कि जीवन में जो बोला सुना माना उसमें क्या भला बुरा। और उसके बाद जो प्यारी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी ही दे ले में, हर एक यहाँ पे अपनी भुलावे में भूला, हर एक लगा है यहाँ पे अपनी अपनी दे ले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी जो भीतर भी भावों का उहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या भला बुरा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप 3 बजे वाला दिमाग जानते हैं, जब रात को हर थॉट हैवी लगने लगता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सेकंड चीज जो डिस्ट्रैक्ट करती है, कंपनी। किस प्रकार की आपकी कंपनी है? अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसका भी लक्ष्य है कि मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो फोकस्ड हैं, तो वो आपको भी एम्पावर करेगा। तो कंपनी अगर ऐसी है जो डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा। ये दो चीजें मोटी मोटी हैं, अगर इसका टेंशन देंगे तो आप फोकस कर सकते हैं।
4: बहुत बढ़िया। परिंदों को मिलती है मंजिल यकीनन फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और खामोश रहते हैं अक्सर वो दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपका हुनर बिल्कुल बोलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप फोकस करें या ना करें, बस वहाँ बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा ही होगा आपका।
3: ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा शो भी सुनते हैं जिसमें अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, क्योंकि ये एम्पावर करती है।
4: तो पहला स्टेप तो आपने ले लिया।
3: व्हाई आई एडेड दिस कि दो डिस्ट्रैक्शंस आप हटाएं, मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे जो नेगेटिव है या फ्रेंड्स हैं,
4: कंपनी।
3: लेकिन अगर आधा घंटा आप कुछ अच्छा सुनते हैं,
4: उससे बहुत फर्क पड़ता है।
3: वो आपको एम्पावर करेगा,
4: बहुत बढ़िया।
3: आपका मन एम्पावर्ड होगा तो वो आपके फोकस में भी आपको हेल्प करेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
9: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
10: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
9: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
11: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
10: ये प्यार जहर की तरह होता है।
9: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
10: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना, आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
15: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
16: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
15: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
17: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
18: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
20: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस journey पे with Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस तरह एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहा था, इसको कहते हैं 3 बजे वाला दिमाग। अभी 3 बजे वाले दिमाग का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि बॉडी थक गई है, लेकिन दिमाग जो है वो ओलंपिक्स दौड़ रहा है, वो दौड़े जा रहा है। सब कुछ ट्राई कर लिया हमने 3-2-1 जो एक कॉन्सेप्ट है वो ट्राई कर लिया, हमने सारे लाइटें बंद कर दी, हमने शीप गिन लिया, हम कैमोमाइल चाय भी पी चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आत्मा थकी हुई हो ना तो जो दिमाग है वो दौड़ता रहता है, वो सो नहीं पाता। तो ओवर थिंकिंग कारण है, जो भी है, बहुत लोगों को आज ये दिक्कत हो रही है कि रात को 3 बजे तक नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये जो है वो चल ही रहा है। इसके लिए क्या करें?
4: यहाँ तक कि कई लोग तो सुनने में आता है स्लीपिंग पिल के बिना सो ही नहीं पाते,
3: बिल्कुल हाँ।
4: क्योंकि वो उसको स्लो डाउन ही नहीं कर पाते,
3: बिल्कुल।
4: और इसीलिए कभी कभी आप बहुत थक कर सो भी जाएंगे तो सुबह फ्रेश नहीं फील होता, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटे के बाद भी, क्योंकि बॉडी सोई है
3: लेकिन मन नहीं सोया।
4: जो आप कह रहे ओलंपिक दौड़ा है या वो चल रहा है, तो उसके कारण फिर आपको फ्रेश नहीं फील होता है
3: जी।
4: तो उसके लिए जरूरी है कि अपने संकल्पों की स्पीड को कम करें। अब देखिए, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनकी स्पीड हमेशा फास्ट ही होती है
3: जी, बिल्कुल।
4: और पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं उनकी स्पीड हमेशा स्लो ही होती है,
3: स्लो हो या ना हो वो आते भी बहुत कम है।
4: एब्सोल्युटली, आप ऐसे स्पीड नहीं कम कर सकते, आपको थॉट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ट्रांसफॉर्म करें और आप सोचें कि अपने आप स्लो डाउन हो जाएं, ये नहीं हो सकते। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, कितना छोटा एग्जाम्पल भी अगर आप ले लें, आप कहीं जा रहे थे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए और आपका टायर पंचर हो गया
3: जी।
4: आपके पास ऑप्शन तो है ना, आप ये भी सोच सकते हैं कि अभी होना था, इतनी जरूरी मीटिंग में जाना था, मेरा ही होना चाहिए था। या आप ये भी सोच सकते हैं कि कम से कम मेरे पास कार है, मेरे पास स्पेयर टायर है, मुझे चेंज करना आता है। नाउ सम पीपल विल से ये तो जबरदस्ती का पॉजिटिव सोचना है,
3: बिल्कुल, कई लोग कहते हैं
4: हाँ, पर ये जबरदस्ती का पॉजिटिव सोचना अपने को सिखाना पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 8:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब रात में थॉट्स की स्पीड बढ़ जाए तो मन को शांत कैसे करें? आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: जी, आपकी सोच होगी वैसी आपकी फीलिंग होगी।
5: तो आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं या परेशान रहना चाहते हैं?
4: आप चाहते खुशी है पर आप क्रिएट एंगर कर रहे हैं।
5: जी, और वो इससे क्रिएट हो नहीं सकता
4: क्योंकि आप सारे क्या कहते हैं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। आपको मन की शांति चाहिए नहीं है, आपका मन शांति है। लेकिन जीवन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशन,
5: राइट?
4: आज आपका दिन शुरू होगा तो सब कुछ आपके अनुसार हो ऐसा नहीं होता,
5: बिल्कुल नहीं होगा।
4: वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू योर ट्यून्स ऑल द टाइम। हर कोई आपके अनुसार करेगा सब कुछ। इसे कहते हैं जीवन उतार चढ़ाव का खेल है, एक प्रकार से खेल है। लेकिन उस समय पर आपने अपने को सिखाया है, जैसे बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, ऐसे आप अपने मन को सिखाते हैं कि चॉइस तो है कि हम ये भी सोच सकते हैं मेरा ही नसीब फूटा है, मेरा ही भाग्य खराब है, मेरे साथ ही गलत होता है ऐसे। लेकिन वो सोच करके नुकसान क्या हो रहा है? आप इरिटेट होंगे, आपके कार्य करने की क्षमता कम हो जाएंगी, आप जितना अच्छा परफॉर्म करते थे नहीं कर पाएंगे, आपके कोई ना कोई डिसीजंस गलत हो जाएंगे। तो आप अपने को सिखाते हैं कि ये जो पंचर हुआ ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, पर अब ग्रैटिट्यूड फील करना उन चीज़ों के लिए जो मेरे पास है और जिसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ वो ज़रूरी है। देन योर थॉट्स का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्लो रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है एंड यू आर एट पीस।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Chaos से काम तक का सफर कैसे तय किया जाए? जानिए ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया से।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ज्यादातर क्या होता है, दिन में आप बहुत चीजों से घिरे होते हैं तो आपके पास समय नहीं होता सोचने का, या अगर होता भी है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते। रात को क्या सब कुछ शांत है, एकांत में आप बैठे हैं, तो उस समय ये जो सारे थॉट्स हैं वो आके घेर लेते हैं आपको। उस समय थॉट्स की स्पीड को जो आप कह रहे हैं कम करें और उनको ट्रांसफॉर्म करें, वो करने का तरीका क्या है?
4: पहली बात तो वो रात को नहीं आपको घेरते, आपको रियलाइज रात को होता है
3: जी,
4: क्योंकि आप अपने साथ समय रात को बिताते हैं
3: जी।
4: बाकी दिन भर में आप ऑक्यूपाइड है किसी व्यक्ति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वर्क के साथ। कभी कभी आप कोई ना कोई एस्केप करने का भी मेथड यूज कर लेते हैं, वरना आप नहीं भी जेन्युइनली ऑक्यूपाइड होंगे तो भी आपका मन अगर बहुत परेशान है या बहुत ओवरथिंक कर रहा है तो कोई टीवी के सामने बैठ जाता है, कोई किसी को फोन। सो वी ऑल्सो ट्राई टू एस्केप इट, पर रात वो समय ऐसी होती है कि अब आपको सोना है तो आप हर चीज से डिस्कनेक्ट होकर के सोना चाहते हैं। सो दैट इज समटाइम्स द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि आपके मन में कितना व्यर्थ चल रहा है, वो उसी समय चलता है ऐसा नहीं है। अब सेकेंड बात जो आपने कही कि उसको स्लो डाउन कैसे करें, तो पहला तो बेस्ट तरीका तो यही है कि दिन भर में जब चलना शुरू हो आप उसी समय पर अगर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोई चीज अगर फिफ्थ गियर में चली गई तो वो पहले फोर्थ, थर्ड, सेकेंड आपको धीरे धीरे लाना पड़ेगा ना। 104 बुखार सीधा तो 99 पर नहीं आएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी जब हम दिन भर में अवेयर नहीं होते, माइंडफुल नहीं होते, बैकग्राउंड में ये चलता रहता है। जैसे फोन पे कहीं एप्लीकेशन होते हैं ना, बैकग्राउंड में चल रहे हैं पर वो आपको डिप्लीट तो कर रहे हैं, आपके फोन की बैटरी को तो डिस्चार्ज करेंगे। और इसीलिए एक चीज जो हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, एवरीवेयर ऑल द सेंटर्स ऑल द स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड।
4: अच्छा,
3: हर एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। कई जगहों तो कंपनी ने फिक्स किया हुआ एक म्यूजिक बजता है या बीप बजता है, आप एक मिनट अपने लिए निकालते हैं। जैसे सड़क पर अगर बहुत ट्रैफिक हो जाए ना, तो फिर ट्रैफिक पुलिस सब तरफ के ट्रैफिक को रोक देती है और फिर उसको डायरेक्ट करती है। यू नो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन देयर इज अ सिग्नल, हमें ऐसा लगता है कि हम लेट हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल है, पर एक्चुअली सिग्नल से आप लेट नहीं हो रहे होते। जिस दिन वो सिग्नल खराब होता है ना,
4: उस दिन ज्यादा लेट होती है क्योंकि सब एक दूसरे के पास आता है, कोई निकल नहीं पाता।
3: उस दिन केओस ज्यादा होता है। वो सिग्नल इसलिए होता है कि वो केओस नहीं हो। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड एक सिग्नल है, आप सिर्फ एक मिनट के लिए रुकते हैं। उस समय आप जो भी कर रहे हैं उससे डिटैच होकर, डूइंग से डिटैच होकर के देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अगर अंदर नेगेटिव चल रहा है, कुड बी समथिंग सो स्मॉल, आपने मुझे कुछ बोला था उस समय मुझे एकदम हर्ट हो गया, उस एक सेकंड में मुझे अपने कुछ जेंटल रिमाइंडर तो देना है, ये उनका पर्सपेक्टिव था। उनके पर्सपेक्टिव ठीक था तो आई विल चेंज, नहीं था तो इट इज देयर वे ऑफ, यू नो ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसको पकड़ के मैं अपना दिन क्यों खराब कर रहा हूँ।
4: बिल्कुल,
3: जितना जल्दी आप चेंज करेंगे इजी होगा। जैसे कोई दाग लगता है
4: उसको इमीडिएटली साफ करो।
3: हाँ, और हम करते हैं, साड़ी पर दाग लगेगा, कपड़े पे, हम चाय का कप छोड़ करके भी इमीडिएटली करते हैं। हमें पता है कि अगर हमने देरी करी तो वो दाग गहरा हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: Chamakte Sitare 2026.
4: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: Ek sapna, ek vaada. और एक सफर जो दिल को छू जाए।
7: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
6: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान।
8: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
7: ये प्यार जहर की तरह होता है।
6: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
7: इसकी एक भी बूंद अंदर रहेगी ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
14: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
15: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पिडाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस journey पे with Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। कहते हैं, हाय विशाल और श्रेया आंटी, मैं समर्थ हूँ। मैं नाइन्थ क्लास में 91% स्कोर मैंने किया है और अब 10th में आया हूँ। लेकिन अब पढ़ाई में जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकस नहीं बनता और क्लासमेट्स भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैंने आपका शो सुनना शुरू किया है जो बहुत मोटिवेटिंग लगा मुझे। 10th में डिस्ट्रैक्शन से बचकर पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? तो ये हाई परफॉर्मर है क्योंकि इसने अच्छा किया है, फोकस किया ही होगा, लेकिन अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है।
3: डिस्ट्रैक्शंस के देखो कई कारण हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है
2: जी।
3: तो मन बुद्धि जब साथ में काम करते हैं उसको एकाग्रता कहते हैं।
2: बिल्कुल,
3: हम फोकस और कंसंट्रेशन की बात करते हैं। माना आप जो सोच रहे हैं वही आपकी बुद्धि देख रही है। हम जो कई बार कहते हैं ना, किताब सामने है, एक ही लाइन बार बार पढ़े जा रहे हैं पर मन कहीं और जा रहा है। तो पहले तो वो डिस्ट्रैक्शन किस चीज का है? एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन है जो सोशल मीडिया या टेलीविजन है। A lot of people think वो entertainment है। कई बार बहुत पढ़ के फिर बच्चे सोचते हैं, अच्छा मैं 30 minutes टीवी देखूंगा, पर ऐसा नहीं होता। आपने 30 minutes information कंज्यूम की है। उस 30 minutes के information को प्रोसेस होने में 2 घंटे लगेंगे। आपका मन अगले 2 घंटे तक डिस्ट्रैक्टेड रहेगा।
2: सही है, क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा होता
3: है। वो प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी जो कई प्रकार के जो आपको एंटरटेनमेंट लगते हैं वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर आप उस समय रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप कोई भी स्टिमुलेशन अपने मन को नहीं दे। वो आपको फोकस में मदद करेगा। आप कुछ खेल लें, आप कुछ उस समय पर सॉन्ग सुन लें, आप इजी बैठ, पर आप अगर इन्फॉर्मेशन अपने को देंगे नया तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। आप जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं आप नहीं कर सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
8: पहले भी मैं तुमसे मिला.
9: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
10: Vishal Mishra.
7: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 9:30 AM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम RK Jewels. Best quality, best price.

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है। वो लिखती हैं कि सिस्टर क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
3: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
2: जी,
3: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
2: जी,
3: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
2: हाँ।
3: कह रहे हैं मेरा मन।
2: हाँ।
3: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं। तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
2: हाँ।
3: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
2: सही बात है।
3: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
2: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
3: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
2: जी,
3: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
2: सही बात है।
3: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
2: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
3: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
2: सही बात है,
3: बहुत अच्छा है,
2: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी हो,
3: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
2: राइट,
3: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
2: सही बात है।
3: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
2: तो चलता रहेगा,
3: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
2: जी।
3: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, अपनी हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज़ वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
2: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
3: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
2: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
3: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना, आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
2: मन थका हुआ,
3: मन थका हुआ है। थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
2: सही कह रही।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि एक साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वो वही चीज रिपीट करता रहता और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साल वेट करो? जो चीज एक साल में ठीक करनी है वो एक सेकंड में भी ठीक हो सकती है। एक साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं एक साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाय भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाली का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप

0: मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए, आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं, आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोलें कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया,
0: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाएं, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा और वो हीलिंग हो जाएगी, तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में ही वो ठीक हो जाएंगे।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माई नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िए नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो ब्लड प्रेशर चेक करो हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका इंजेक्शन मत दो उसको वन सेकेंड मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ प्लीज यहाँ पे आ जाइए मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं इसको डोनेट कर दीजिए आके इसकी जान बच जाएगी
2: कहाँ ना सर
1: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए आगे ले आओ
2: मैं दे दूंगा
1: 4 यूनिट दे दीजिए इसकी जान बचाएगी इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं
2: 4 यूनिट
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज ब्लड नहीं चाहिए इसको आगे ले आओ अब आगे ले आओ उसको आगे ले आओ ब्लड नहीं चाहिए इसको हाँ ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको यूरिन की कमी हो गई है आपका यूरिन चढ़ाना है प्लीज जल्दी आ जाएंगे
2: क्या चढ़ाना
1: है यूरिन चढ़ाना है इसका सारा यूरिन खत्म हो गया प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे
2: क्या चढ़ाना है यूरिन चढ़ाना
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था ये रात को बाहर निकल गया इसको मना भी किया था पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो ये बाहर गया चौकीदार घूम रहा था चौकीदार ने सीटी बजाई इसने सारा निकाल दिया
2: पेशाब निकल गया मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं आपका ग्रुप मिल गया
2: सर इसका हीरोइन में सर मैच होता है क्या मतलब जैसे ब्लड मैच होता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: हीरोइन का भी कुछ होता है
1: बिल्कुल बिल्कुल ये मैच होता है मैं आपको बताता हूँ ये मेरे पास सारी डिटेल है 1 सेकंड रुकिए कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं
2: अच्छा
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है
2: क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा
1: आप मुझे ये बताइए अभी आपको प्रेशर बन रहा है प्लीज जल्दी आ जाइए यार
2: अभी तो सर लग नहीं रहा 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए और आप इतना वो परेशान मत होइए आपका जो भी खर्च हो ठीक है और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके आप फिक्र ना करें
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है मैंने मजाक किया था
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय
7: एक सपना एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए
8: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं
7: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार समय और हौसले से आगे है मैं वापस आऊंगा A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
9: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Vagh and Vedang Raina.
8: Ye pyar zeher ki tarah hota hai.
7: Releasing 12th June in cinemas near you.
8: Iski ek bhi bool andar reh gayi na. To ye aakhri samay mein chance se marne bhi nahi deta.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है
14: पहले भी मैं तुमसे मिला।
15: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा
16: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents अ नाइट लार्जर देन लाइफ विशाल मिश्रा पागलपन टूर फ्राइडे जून 26th हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
17: एंड साई USA Inc. .com

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह, फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is love's genius that she casted both of us together. So thank you, love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तू में जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल। एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: Red Room.
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
3: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
2: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
4: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
5: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
4: in association with World Vegan Vision.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search istunnara, Krishna Jewelers Me, exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
17: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट आई डोंट थिंक प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुलेट 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस। तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। टॉक्स अबाउट योर टेस्ट मोर देन माइन, चेक इट आउट, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20। आई एम सुरेन,
2: नंबर 1।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं, बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 10:30 AM, मिर्ची टाइम चेक।
4: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virba, la burka. Milci, burka. हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
8: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
7: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान।
9: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
8: ये प्यार जहर की तरह होता है।
7: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
8: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
10: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
11: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
10: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
12: अभी न जाओ छोड़ कर।
11: 28 जून 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे मिला।
4: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
5: Vishal Mishra.
0: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi ka.
8: Radio Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर

0: काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ है सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: गुड मॉर्निंग, सांभळी रह्या छो मिर्ची, हूँ छो कृतार्थ। आज नो वेकअप विचार, हूँ जे बोलवा जई रह्यो छु, तमे खाली एना पर विचार करो, इमेजिन करीने जुओ। जो तमे टीवी नु रिमोट हाथ में लो अने रिमोट ना चाले तो तमे पहलू काम शू करो? रिमोट ना सेल चेक करो, बराबर। जो एसी ना चालतू होय तो तमे पहला शू करो? एसी नु रिमोट चेक करो। जो गाड़ी ना चालती होय तो तमे पहलू काम शू करो? तमे गाड़ी थी बाहर उतरो, एना पछी एंजिन नु हुड खोलो अने एंजिन मां तमने आवड़े के ना आवड़े तमे चेक करवानो प्रयत्न करो। एटले के जो गाड़ी बगड़े तो गाड़ी नी अंदर जुओ, टीवी बगड़े तो रिमोट मां जुओ। पण जो व्यक्ति नो स्वभाव बगड़े, पोतानु मन बगड़े, गुस्सो आवे, मूड बगड़े, तो आपणे हमेशा बहार जोता आईए छीए, अंदर नहीं। विचार करीने जुओ, गाड़ी बगड़े तो एनु सल्यूशन गाड़ी नी अंदर ज होय, एवी रीते तमारो जो मूड बगड़े तो एनु सल्यूशन दुनिया पासे मांगवा ना जवाय ने शोधवा पण ना जवाय, ए सल्यूशन तमने तमारा अंदर ज मळशे। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट। गुड मॉर्निंग, होपफुली वात समझाई होय तमने।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
8: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
7: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
9: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Wagh and Vedang Raina.
10: Ye pyar zeher ki tarah hota.
7: Releasing 12th June in cinemas.

0: नहीं आई,
1: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
2: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे
4: मिला। सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा
2: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार,
2: hello?
3: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या अब पागल है क्या?
3: पागल आप है,
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप।
4: किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ है सर?
3: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
3: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
4: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी, जी
3: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा।
3: हाँ।
4: 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
10: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
9: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
11: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Wagh and Vedang Raina.
10: Ye pyar zeher ki tarah hota hai.
9: Releasing 12th June in cinemas near you.
10: Iski ek bhi bool andar reh gayi na, to ye aakhri samay mein chain se marne bhi nahi deta.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Vishal Mishra, live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Listener MA, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: सुन रहे हैं आप. अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. इस बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल शाउट आउट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की विद गाना नंबर 10. अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: This song screams that Punjabi aa gaye hain. Hey, Diljit Dosanjh ki awaaz, unki composition. Gaane ka naam hai Dealer. 11 hafton se Punjabi is countdown pe resident ban chuke hain. Pichle hafte se 3 position niche drop hoke Dealer was this week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट. सोचने वाली बात है, ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन, राइट? कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है. बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है.

0: @RJKalyg को इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, मीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज दया द रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो बहन जी।
4: हाँ जी।
5: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
4: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
5: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
4: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए।
5: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
4: नहीं, हाँ। इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
5: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
4: तो उतार लीजिए।
5: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
4: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
5: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड
4: देखिए, सुसू करा होगा उसने। अच्छा, देखिए।
5: हाँ, सुसू करा। चल,
4: उतार दीजिए एक सेकंड।
5: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
4: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
5: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया। अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
9: पहले भी मैं तुमसे मिला।
10: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
11: Vishal Mishra.
8: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
12: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
12: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
13: Ek sapna, ek vaada aur ek safar jo dil ko chhu jaye.
14: Dil ke andar ek ladki ko rakhna jise 78 years se dekha tak nahi.
13: Dekhe 12 June ek aisi kahani jo pyar, samay aur hausle se aage hai. Main wapas aaunga. A film by Imtiaz Ali.

0: अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanega. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanega. I truly believe that aap gaane share karte hai na jisse bhi, jis dost se wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाई और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

Deepika ka gana called Something Something. If you are from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Meeka Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subah Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 volt from Sultan. Meeka Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनकी एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते ही आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन I challenge you, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. The biggest party voice of our generation, मीका की आवाज में, this is something something, a 2006 indie pop song playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है RJ करेका. Enjoy. Yeah.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म. मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं नहीं, मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे. दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रिकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना व्हिच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर. हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की तरफ, हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोतल का गाना. गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.
2: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए. योग कीजिए.
3: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार. आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें. हर दिन 30 मिनट योगा करें.
2: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी.
4: सेलिब्रेट योगा विथ अस एट 125 रारतन सेंटर, पार्कवे एडिसन, न्यू जर्सी, संडे जून 14, 2026, 10 AM. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 732-470-5598
5: ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट
6: इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड वीगन विजन.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
10: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
9: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
11: अभी न जाओ छोड़ कर.
10: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
15: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 5:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: टी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गारा इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अक्सर जब हम बैठते हैं, म्यूजिक मूवीज के बारे में बात करते हैं, हर जनरेशन के कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं, मॉरल गार्ड बोलते हैं उनको, जो ये बातें शुरू कर देते हैं कि यार आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है, आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी। अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना, वो कंप्लेन करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना। मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक। मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग। आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है। इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशान सरकार। We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है। एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू। What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने फोक म्यूजिक को कि यार ये तो उस जमाने का म्यूजिक है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। उन्होंने उससे ही आज की लैंग्वेज में बात करके दिखाई। गाना बहुत एनर्जेटिक है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली डांसेबल, ग्रूवेबल, लेकिन डांस के लिए नहीं बना है। एंड कोरस में एक ऐसी क्वालिटी है दैट एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप म्यूजिक सो एक्साइटिंग। हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

इस गाने को एक बार सुन के कहाँ भी नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJKaringa ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा, हमसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है। अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोरे ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरे आगे पीछे लगे सुन दोना छोरी का हर।
0: मेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
6: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
1: Number 1.

0: ना चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
0: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी, फ्राइडे जून 26, हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: ब्रॉट यू बाय डीप फूड्स। डीप फूड्स खाओ तो जानो। ब्रॉट यू बाय डीप फूड्स। डीप फूड्स खाओ तो जानो।
7: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है. कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना. लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई. हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान. और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है. क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं. गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन. एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का. और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में. हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20. एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं. दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर. एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट. लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस. शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से. ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है. सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा. बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन. कहीं जाना मत. आई विल बी बैक.
5: Number 20.

मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है। और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।

दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं। एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती है, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस, श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी। नंबर 18।

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: कहाँ पे है यार। हेलो हेलो ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या। हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत कम से कम बात अरे? मेरी सुन मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ। आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ
1: क्या। आप पागल है क्या।
2: पागल आप है क्या। पागल आप है। पागल आप है
1: क्या। पता नहीं क्या है अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया।
1: हेलो
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या आप बुरा ना माने मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: एक सपना एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
11: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
10: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान
12: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाग एंड वेदांग रैना।
11: ये प्यार जहर की तरह होता है।
10: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
11: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
13: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद

0: खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: 28 जून 3 PM एट ITV गोल्ड ऑडिटोरियम ओक ट्री रोड। कॉल सतीश राइट नाउ एट 8628129111।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 17.

0: वेलकम टू द जंगल। और उस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये फिल्म कम लगती है और बॉलीवुड कॉमेडी एक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग ज्यादा। इतने लोग हैं इसमें कि अगर एक और एक्टर जुड़ गया ना तो अटेंडेंस रजिस्टर खोलना पड़ेगा। लेकिन मजाक एक तरफ, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे एक और ट्रेंड से रूबरू करवा दिया। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्म्स के सीक्वल्स नहीं बना रहा, बॉलीवुड यादों के सीक्वल्स बना रहा है। पहले फिल्म का सीक्वल आता था, लेकिन अब फिल्म के साथ उसमें जो गाने थे उनके भी सीक्वल आ रहे हैं। भूल भुलैया वापस आती है तो उसका टाइटल ट्रैक भी वापस आ जाता है।
1: तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में looking for you, baby।
0: डॉन वापस सो उसकी थीम वापस, धूम वापस तो उसकी भी थीम वापस, एंड देन यू गॉट है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें टाइटल ट्रैक भी है, चुनरी चुनरी भी है। पहले नोस्टैल्जिया साइड डिश हुआ करती थी, अब नोस्टैल्जिया मेन कोर्स बन चुकी है। और शायद इसलिए जब कोई नया गाना अपनी खुद की पहचान बना लेता है तो वो और भी खास लगने लगता है, जैसे गाना नंबर 15 वंस अगेन बाय विशाल मिश्रा।
2: नंबर 15।

दीवानियत, एक ऐसा गाना जो किसी पुरानी याद को बोरो नहीं करता, अपनी याद बनाने की कोशिश करता है। और अब नंबर 14 पे एक गाना जो पहले इंटरनेट का था फिर बॉलीवुड का हो गया। दिस वन इज फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, हमने वही दिल लगाया, बाय द मंडल ब्रदर्स।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values, and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: Vishal Mishra live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
19: नंबर 13।

0: जाइए सजना बाय द ऑसम चिक जैस्मिन सैंडलर्स और धुरंधर मेरे लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। ये एल्बम सिर्फ हिट नहीं हुई, ये नए सिंगर्स को भी स्पॉटलाइट में लेके आई। जैस्मिन सैंडलर्स को ही आप देख लीजिए, काफी सालों से वो गाने गा रही हैं, यार ना मिले, इलीगल वेपन, लेकिन कभी कभी एक गाना ही काफी होता है पूरा परसेप्शन बदलने के लिए। और फिर बॉलीवुड का म्यूजिक बिजनेस मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक तरफ नई आवाजों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ आवाजें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मेरा फोन जो है वो शफल मोड पे था और अचानक ये गाना चल पड़ा।
1: काले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाहुदा तुझको है चाहता जान।
0: Do you remember the song? It was from Murder 2. और सिंगर थे हर्षित सक्सेना, एक ऐसे सिंगर जिनका नाम सुनते ही आज भी ये गाना मुझे याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद Where did he go? Chartbusters की लिस्ट में वो नाम फिर कभी वैसे नजर ही नहीं आया। And then there is a name जो मुझे याद आया, which is the most shocking, अंकित तिवारी, मेरा दोस्त, एक सिंगर कंपोजर जिसने बैक टू बैक दो ऐसे गाने दिए जो पूरी जेनरेशन की प्लेलिस्ट को डिफाइन करते हैं।

यार सवाल ये नहीं है कि अंकित तिवारी कहाँ चले गए, सवाल ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाता है। कल जिस आवाज पर पूरा देश फिदा था, आज उसकी जगह कोई नई आवाज ले लेती है। लेकिन मेलेडी की एक खूबसूरत बात है, वो रिटायर नहीं होती, बस नए चेहरे ढूंढ लेती है। और इस वक्त उस नई आवाज का नाम है फहीम अब्दुल्ला। नंबर 12 पे इज इटर्नल हिट सैयारा का टाइटल ट्रैक। नंबर 12।

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है, जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे वो लंबी ड्राइव, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना, और हाँ शायद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है। दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। And how Shahid can still look so convincing as a college boy, it totally baffles me. But he nails it. मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बस इतना पता है, मैं इसे skip नहीं कर पा रहा। And maybe that's the biggest compliment a song can get. Maybe this song will go to number one. लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का दो अलग दुनिया एक साथ. This is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
4: पहले भी मैं तुमसे मिला।
5: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
6: Vishal Mishra. कैसे
3: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: This hour is brought to you by Raj Jewels.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

नंबर 9 पे था वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा ए आर रहमान। एक और रिमाइंडर कि प्यार सिर्फ शोर नहीं मचाता, इट डजंट हैव टू बी लाउड, कभी कभी वो धीरे से दिल में जगह बना लेता है। और शायद इसलिए कुछ फिल्म्स वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। ये जवानी है दीवानी, उसकी रिलीज को अब 13 साल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लोग उसे एक फन समर एंटरटेनर समझ रहे थे, ग्लॉसी स्टार्स थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस, द धर्मा स्टाइल रोमांस। लेकिन आज समझ आता है कि फिल्म एक्चुअली थी किस बारे में, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, द अर्ज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, और वो कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन एम्बिशन एंड बिलोंगिंग। अयान मुखर्जी ने उस जेनरेशन की कंफ्यूजन को बॉलीवुड स्केल पे कैप्चर कर लिया। और फिर आता है उस फिल्म का म्यूजिक। Allah!

0: ये सिर्फ ट्रैवल सॉन्ग नहीं रहा, ये गाने लोगों की मेमोरीज बन गए। लेकिन अगर उस पूरी एल्बम में एक थीम थी, एक स्पिरिट था, एक सोल था, तो वो था कबीरा। वो गाना जो आप सेलिब्रेशन में नहीं सुनते, आप उसे तब सुनते हो जब जिंदगी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए। फिल्म में उसके दो वर्जन थे, लेकिन माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज द वन दैट इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दिस इज द रीप्राइज वर्जन ऑफ कबीरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: व्याह करवा दो जी। एंड ऑनेस्टली है जवानी तो इश्क होना है, थिएटर्स में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस ने फिल्म को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना अपनाया है। लेकिन इस हफ्ते एक और फिल्म ने मेरा ध्यान खींच लिया, कॉकटेल 2। इसका ट्रेलर आ गया ऑन यूट्यूब। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द फिल्म और मैंने भी सोचा यार कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ जरा देख लूं, जानू तो सही शाहिद, रश्मिका और कृति आखिर अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। ट्रेलर हिंदी में, फिल्म हिंदी में, गाने हिंदी में, लेकिन स्टेज पर हुई बातचीत पूरी अंग्रेजी में। और ये बात सिर्फ कॉकटेल 2 की नहीं है, आजकल किसी भी बड़ी फिल्म लॉन्च को देख लीजिए, कभी कभी लगता है फिल्म का प्रमोशन कम और MBA में वाइवा ज्यादा चल रहा है। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाली डिबेट नहीं है बॉस, वो बोरिंग है। ऑडियंस इंग्लिश समझती है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, चाहे कानपुर में बैठी हो, चाहे मुंबई में बैठी हो, चाहे इंदौर में बैठी हो। इशू भाषा का नहीं है, इशू कनेक्शन का है, क्योंकि सिनेमा तब बनता है जब आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनकी भाषा बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक भाषा में बात करता है और सपने दूसरी भाषा में बेचता है। ऑडियंस अब टाइटल्स पढ़ लेगी, एक्सेंट भी समझ लेगी, इंग्लिश भी समझ लेगी, बस एक चीज है जो ऑडियंस के साथ नहीं चलती, एंड दैट इज फेकनेस। हमें चाहिए कनेक्शन। लेकिन इस फिल्म के एक गाने का जबरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है। आई हैव बीन हियरिंग इट ऑन लूप, मेरे दिमाग से ये गाना नहीं निकला है। इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक, माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, 4 पोजीशंस ऊपर, सर्टिफाइड बैंगर बाय प्रीतंदा, क्रिटिक्स गए तेल लेने।
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: Mirchi मुर्गा.
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो बहन जी.
4: हाँ जी.
5: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
4: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
5: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड.
4: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
5: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
4: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
5: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका.
4: उतार लीजिए उसको.
5: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
4: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
5: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
4: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए,
5: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा. चल
4: उतार दीजिए.
5: एक सेकंड उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही
4: है.
5: क्लैपिंग करो.
4: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
5: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
4: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
9: पहले भी मैं तुमसे मिला.
10: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
11: Vishal Mishra.
12: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
13: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
14: Chamakte Sitare 2026.
13: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
15: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरु.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
18: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: Ab, mirchi kha.
22: Radio Mirchi, it's hot.
0: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra Saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: नो
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी, फ्राइडे जून 26, हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
17: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
18: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 3.

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ, करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक पीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेनिटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। So now it is up to Farhan Akhtar. वही decide कर सकते हैं if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से number one and still refusing to move. ये है शरारत from Dhurandhar 1, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये everlasting banger.
1: Number one.

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's 7:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: This hour is brought to you by Raj Jewels.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और कसम से दोस्त, रोग अगर आपको कोई हो जाए ना, इश्क का रोग हो, जहनी कोई रोग हो, कुछ भी हो, लोग इतनी राय देने आ जाते हैं, अपना अपना नुस्खा बताने आ जाते हैं कि क्या कहा जाए। कतील शिफाई साहब का बड़ा एक सटीक शेर है, कहते हैं कि जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। वाह जी वाह, इतने सारे लोग आ जाते हैं जो कि अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं कि ये करके देख यार, इससे